नया वर्ष को अवसर में सेंसई का होम अप्लायंस को खरीद में आकर्षक उपहार तथा कैश बैक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल सेमी ऑटोमेटिक में 1 केजी एरियल एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन साथ ही इंस्टेंट कैश बैक बंपर में हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद कर सकता।

0: रेडियो साइन 89.8 मेगाहर्ट्ज।
1: योग गरौं रहौं निरोग। पतञ्जलि योग पीठ नेपाल, महिला पतञ्जलि योग समिति नेपाल, पतञ्जलि योग समिति नेपाल, युवा समिति नेपाल र पतञ्जलि योग समिति चितवनको सहकार्यमा आयोजित वृहत निशुल्क योग शिविरमा सहभागी भई स्वस्थ रहौं। योग शिविर हुने मिति 2083 जेठ 5 गतेबाट 7 गतेसम्म। स्थान गुन्जनगर ग्रीन पार्क। समय बिहान 4:30 बजेबाट 6:30 बजेसम्म। समय नयन महिला पतञ्जलि योग समिति चितवन, महानगर योग समिति, महिला महानगर योग समिति चितवन। आयोजक भरतपुर महानगरपालिका 18 नम्बर ओडा कार्यालय।
2: Subscribe now and press the bell icon, never miss an update.

बजेबाट 6:30 बजेसम्म समय नयन महिला पतञ्जली योग समिति चितवन महानगर योग समिति महिला महानगर योग समिति चितवन आयोजक भरतपुर महानगरपालिका 18 नम्बर ओडा कार्यालय।